0: ये न्यू बी दा, दो दा, दाग दार दो दो दा।
1: कच्ची मुन्ने आर्श दो। दा दा दा दा। दाग रान रे। तीन रे याम सेलो, रंगी न्यू दा नो मिन दो आ।
0: नो सीर बे। अरानी की नी दी चेंजे चला शुभ, ये नो सीर बे आ। दी करे सुन जोशे, कौन से दो आ?
1: 还是雨，今晚俺老大这次没呗。今晚枪是沉的你们的，大管俺老大这次钓鱼。
0: 用啊，啥还不中鸡吧？

0: ये रंग असे रंग कर ची या या गुदा गुदा सो शुगो तो मारते हैं ची बिरा साथी न्याम तो तुम कुछ शिक्षक ही भी
1: रंग मैं किप चेप थों दू आ मैं किप सिरा दू चेप जो राजी
0: चेप जो कर ची सो
1: रंग कर चेप जाम जी Pomo chik chi du, de ya, sim du, ara du den chok har du, di jeb ju me na, ka re?
0: Garo da chue bris, sui si du a.
1: Ka deb yong, sui ne ha kwa ba.
0: Yin da, da nga ni la, la la la,